नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः।

नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बांधवाय नमः।

ओम ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः स्वाहा यात इषुश्शिवतमा शिवं बभोवते धनुः शिवाशर्व्याय तपतगा नो रुद्र स्वाहा तीसी सीधा कंते तपतगा

हरिः ॐ श्रीमात्रे नमः साईरामा बीजापूरगदेक्षु कार्मुक लसच्चक्राब्जपाशोत्पल व्रीह्यग्रस्व विषाण रत्नकलश प्रोज्यत्कराम्भोरुहगा जेयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदगा ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं

राधा के नटवर लाल कन्हैया, गोकुल बाला गोपरिपाला, राधा के नटवर लाल कन्हैया। नंद कुमार